सुप्रभात। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं और हमारी आज की प्रसारण सेवा अब आरंभ हो रही है।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः की 6 बजने को है, श्रोता सुने आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी 2 दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथा समय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
3: सभी मेरे कार्यों को देखें, महत्व दे, मेरी बातों को मूल्य दिया जाए। सब मेरी बात को समझते क्यों नहीं? सभी मुझे अवश्य जान जाएंगे। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं। यह सोच, ये दिखावा, ये दमित अहंकार आज हम में से बहुतों पर हावी है। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, ये दोहरा व्यक्तित्व पारदर्शिता से कोसों दूर है। इसी छद्मवेशी प्रवृत्ति के चलते वो प्रसिद्धि, प्यार, सम्मान तथा सफलता की छाया को पकड़ने की कोशिश करता है। प्रशंसा की भूख ही हमें आत्म प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। वास्तव में प्रदर्शन एक कला है, लेकिन स्वार्थवश उसे हित अहित की परवाह नहीं होती। परिश्रम के बिना प्रशंसा प्राप्ति की पिपासा रहती है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने हेतु तमाम ऊटपटांग हथकंडे अपनाने लगते हैं। योग्यता के बिना प्रशंसा अधिक समय तक नहीं टिक सकती, बल्कि कुछ हालातों में तो सम्मान के स्थान पर अपयश ही हाथ लगता है। उसका समय, संकल्प और सामर्थ्य यूं ही व्यर्थ चला जाता है। क्या ही अच्छा हो कि लोग प्रशंसा पाने के लिए लोक सेवा की ओर मुड़ा जाए, झूठे अहम का लबादा उतारकर विनम्रता को जीवन में स्थान दिया जाए। प्रशंसा की तृष्णा अनुचित नहीं, पर प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावना के साथ उचित प्रयत्न किया जाना चाहिए। यदि प्रशंसा या पारितोषिक न भी मिले, पर अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना है। प्रशंसनीय कार्य करें, न कि गले में ढोल बांधकर अपनी ही महिमा गाने लगें, और तब भी तृप्ति ना हो तो दूसरों की ढोल की पोल खोलते रहें। अपने को साफ सुथरा समझना और दूसरों को बुराइयों का पिटारा, ये परचिंतन पतन की जड़ है। जैसा चित्र मन में होगा, वैसा ही चरित्र निर्मित होगा।

0: हम स्वयं से बात करें कि क्या हमारा लक्ष्य यही है। इससे क्या प्राप्त होगा? खाली मन शैतान का घर होता है। तभी तो निठल्ला व्यक्ति एक दूसरे के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करने लगता है, मनगढ़ंत कहानियां बनाकर प्रचार प्रसार करता है। इसके लिए उसके पास नवीनतम लेखा जोखा रहता है और सतत सक्रिय रहता है उनका सूचना तंत्र। दोनों आंखों और कानों के साथ मस्तिष्क निरंतर क्रियाशील रहता है कि कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल जाए जिससे किसी का भंडा फोड़ करके सबकी वाहवाही लूट सके। यही नहीं, विडंबना तो ये है कि जरूरी गैर जरूरी दृश्यों, क्रियाकलापों और दूसरों की दिनचर्या को कैमरे में कैद करके अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना आज सर चढ़कर बोल रहा है। ये प्रवृत्ति सर्वथा आत्मघाती है। ये दलील देना कि ये हमारा व्यवसाय ही है लोगों के गुण दोष जांचना और परखना, ये मात्र प्रदर्शन और उसका रसास्वादन ही होगा। व्यभिचार और भ्रष्टाचार की कीचड़ को मात्र कुरेदने और फैला देने से दुर्गंध ही फैलती है। अवगुणग्राही प्रवृत्ति जैसा परिवर्तन करने का मनोबल कभी नहीं जुटाया जा सकता। सबसे पहले अपने मन की इस शुद्ध प्रवृत्ति को समझकर स्वयं से वार्तालाप करना आज आवश्यक बन पड़ा है। मेरे मन, अब तो इधर उधर भागना, इधर उधर की हांकना छोड़ दे। बहुत गई, थोड़ी रही। कब तक यूं ही सर्वनाश का खेल खेलता रहेगा? हीरे जैसा अनमोल जीवन कौड़ियों के पीछे क्या यूं ही गंवाता रहेगा?
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन अहंकारी मन। वाचन स्वर था जया रंधर का। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ मातृवंदना के साथ।

समूह स्वरों में गाए इस मातृवंदन के बाद आइए अब आरंभ करते हैं प्रभु आराधना। प्रथम पूज गणपति वंदना के साथ। हे प्रभु श्री गणेश, आप गणों के स्वामी, दया के सागर और ज्ञान विज्ञान के ईश्वर हैं। आप केवल बाहरी बाधाओं को ही नहीं वरन भक्त के भीतर की आशंकाओं को भी दूर करने वाले हैं। जब जब ये मन आपके ध्यान में जाता है, तब श्रद्धा, विवेक और सत्कर्म का संचार स्वयं ही जीवन को आनंद से भर देता है।

रे मन संसार के सारे सहारे बदल सकते हैं, पर ईश्वर से हुआ प्रेम अटल रहता है। जो भक्त श्रद्धा विश्वास समर्पण के साथ प्रभु का ध्यान करता है, उसे हर दिशा में हर द्वार में प्रभु का ही आभास होता है। ईश्वर को पा लेना ही परम सुख है।

जीवन की प्रत्येक सुबह परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य उपहार है, जो भक्त दिन की शुरुआत प्रभु के स्मरण से करता है उसका मन निर्मल, शांत और उत्साह से भर जाता है, क्योंकि ईश्वर का नाम पूजा तक ही सीमित नहीं है, वरन विचारों, वाणी और कर्मों को पवित्र बनाने का भी माध्यम है।

हे माँ अम्बे, जैसे भंवरा कमल के सौंदर्य और सुगंध से उसकी ओर बार बार जाता है, वैसे ही माँ हम आपके चरणों में शांति और सुरक्षा पाने के लिए जन्म जन्मांतर से जुड़े हैं। जीवन में सुख आए या दुख, माँ हम आपसे यूं ही प्रेम पूर्वक जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपके सिवा माँ हमारा कोई नहीं है, हम आपके चरणों में जुड़े हैं।

चूम कर कहने लगे, प्यारी अम्मी जान हमको जल्द समझा दीजिए, किसकी तख्ती ठीक है लिल्ला फरमा दीजिए। फातिमा सहरा ने तख्ती हाथ में ली, जिस घड़ी प्यार से दोनों के चेहरों पर नजर उनकी पड़ी। ममता से मांगा दिल करवटी बदल कर रह गया, प्यार का जज्बा कलेजे में मचल कर रह गया। प्यार का

फैसला इसका करेंगे सिर्फ दामाद रसूल। मेरे बच्चों मैं जो कहती हूँ उसी को मान लो, जाओ ये तख्ती दिखाओ अपने अब्बा जान को। इतना सुनकर चल दिए शेर खुदा के सामने, दौड़े दौड़े दोनों पहुँचे मुर्तजा के सामने। फिर अली शेर खुदा से भी यही की दीजा, प्यारे अब्बा जान कर दीजिए हमारा फैसला। देकर सख्ती अली को भी यही आया ख्याल, अपनी नाकामी को सुनकर रो पड़ेगा एक लाल। सोच कर इस बात को बोले अली मुश्किल कुशा, जाओ इसका फैसला कर देंगे महबूबे खुदा। जाओ इसका फैसला कर देंगे।

लेकर के तख्ती आपने जिब्रील को ये कहा जिब्रील से ऐ मेरे नाम अबर सुनो जाओ ये तख्ती खुदा के सामने ले जाओ तुम और मेरी जानिब से भी अल्लाह को समझाओ तुम ये मुकदमा है अली हैदर के नूरे आयन का मेरे मौला तू ही कर दे फैसला हुसनैन का लेके तख्ती जब खुदा के पास पहुंचे जिब्राइल इस तरह जिब्रील से कहने लगा रब्बे जलील जब मेरे दिल भर को इतना पास है हुसनैन का फिर मैं कैसे दिल दुखाऊं।

इसी नाद के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदरपूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क से उन्होंने अपने अज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन है?

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण आज की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का।

रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे शैल संगीत कार्यक्रम में हरीश सिंह मेहरा के गाए कुमाऊनी लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा प्रातः 8:30। सुबह 9 बजे होंगे सदाबहार फिल्म गीत। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा सुबह 10:02। सुबह 10:35 पर लोक संगीत में आज हमारे श्रोता सुनेंगे कुसुम भट्ट के गाए गढ़वाली लोकगीत और सुबह 11 बजे का समय रहेगा हमारे श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का।

दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता सुनेंगे विपुल कुमार रोहिला से गजलें। दोपहर 12:30 पर बहनों का कार्यक्रम होगा जनानों का वास्ता। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30 पर।

अपराह्न 4:02 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता सुनेंगे पंडित राजेंद्र प्रसन्ना से राग मारवा में बांसुरी वादन। अपराह्न 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम में आज की अदाकारा होंगी अभिनेत्री नीतू सिंह। सायंकालीन सभा का आरंभ होगा 5:10 पर कार्यक्रम युवाणी के साथ। 5:45 पर पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत में आज हमारे श्रोता सुनेंगे डॉक्टर देवेंद्र सिंह रावत से की गई भेंटवार्ता। विषय रहेगा दांतों को पायरिया रोग, कारण, लक्षण और उपचार।

0: किसान साथी कृषि जगत कार्यक्रम सुनते हैं सायंक 7 बजे 7:50 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति होगी राज्य दर्शन और रात्रि 8 बजे आज हमारे श्रोता सुनेंगे अंग्रेजी वार्ता के अंतर्गत हरजस कौर से अंग्रेजी वार्ता। विषय रहेगा डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ओपिनियन पावर ऑफ कलेक्टिव एक्सप्रेशन। समय याद रखेगा रात्रि 8 बजे। सुगम संगीत में भजन होंगे अनुराधा पोडवाल की आवाज में रात्रि 8:15 पर। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:00
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढ़ाह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शांति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय यूपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्याम परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणां आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन इंडोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्तांग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उतवा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आंतरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति यतः वैश्विक तैल वातेंधनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनम्

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील

फसलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमेरिका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया।

गर्मी से झुलसे फूल पौधे, और आपका हमारा मन नए उल्लास से भर गया है और मन कर रहा है कि ऐसे में कोई अपना प्रिय हमारे साथ हो तो जीवन को सार्थकता मिल जाए। ऐसा ही एक गीत परख फिल्म का अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसमें इसी भावना को प्रदर्शित किया गया है।